वदने प्रसन्न होसी निज दाता ते चापासन सोड़ी तोड़ी भव पाचा प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी निज दाता ते चापासन सोड़ी तोड़ी भव पाचा अम्बे तुदवा तू न पुण पुर बिल आशा नर हरि तल्लीन

प्रसन्न वदने प्रसन्न होती निजदाता एका पासन छोड़ी तोड़ी भव पाशा अम्बे सुदवासिन्न गुण पुर विल आशा नरहरि तल्लीन ताला पद पंकज नेता अम्बे सुदवासिन्न गुण पुर विल आशा नरहरि तल्लीन ताला।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को 0 शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

संपर्क 95 95 24 25 59 डॉक्टर परीक्षित फेगड़े यांचे सिद्धिविनायक क्लिनिक 95 95 24 25 59

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: फेसबुक इन स्काई, व्हाट्सएप इन लाइफ, मान मोड काम, इतनो आराम, सो स्टार्ट अप योर डे विथ रेनबो फन डे, रेनबो फन डे,
2: रेनबो फन डे, रेनबो फन डे,
1: म्यूजिकल साथ, रियल

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए

0: और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया।

0: पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
1: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्र संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काईवॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
2: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: हेलो गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। शुरू हो गया है कार्यक्रम मस्त मुंबई। एक और नई सुबह, एक और नया दिन, क्या खूबसूरत सा वक्त है। सुबह सुबह वाकई घर से निकलते हैं तो पूरे दिन में जिस तरह का बाहर तापमान होता है उसका जरा भी अंदाज़ा नहीं होता। तो काफ़ी सुहानी जो है सुबह हो गई है। 15 मई है, क्या बात है, 15-5। और आज का दिन और भी खास होता है सारे हिंदी फिल्म प्रेमियों के लिए। अगर आप भी दिल से पूरी पूरी तरह फिल्मी हो तो आपको अंदाज़ा आ गया है कि आज ऐसा क्या खास है। तो उसी खास से जुड़ी जो है आज की बातें होने वाली है सिनेमा का मैटनी शो में। और दिन की शुरुआत हुई है तो सुबह सुबह बस यही कह रही है रोशनी आपसे कि सपनों की उड़ान आसमान तक ले जाएगी, सपनों की उड़ान आसमान तक ले जाएगी, मेहनत की रोशनी हर अंधेरा मिटाएगी, हर सुबह विश्वास जगाकर आगे बढ़ो क्योंकि मेहनत से ही मंजिल जो है आपके पास पहुंच जाएगी।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

कार फिल्म का बहुत ही खूबसूरत गाना, एक अल्टीमेट डांस ऑफ, और दिल कर रहा है एक ऐसा ही एक और बहुत ही आइकॉनिक डांस ऑफ गाना सुनने का, तो वो गाना ज़रूर सुनेंगे। लेकिन जैसे ही बता दिया कि आज 15 मई है, कई सारे हमारे लिसनर्स हैं उन्होंने समझ लिया है कि जैसे कि महेश बोहरा का मैसेज आ गया है, डॉक्टर अंजू, प्रणव शिंदे, पंकज मोहत, सभी यही कह रहे हैं कि 15 मई यानी आज है धक धक गर्ल, डांसिंग क्वीन, स्माइलिंग ब्यूटी और हमारी सभी की फेवरेट माधुरी दीक्षित का जन्मदिन। तो सभी माधुरी दीक्षित के चाहने वाले देश में, दुनिया में, हर जगह जगह कोने कोने में जो है, उन सभी की तरफ से आकाशवाणी के और एफएम रेनबो की पूरी टीम की तरफ से माधुरी दीक्षित को जन्मदिन की लाखों ढेरों करोड़ों बधाइयां देते हुए आज का जो मस्त मुंबई कार्यक्रम है, और खास बात यह है आज शुक्रवार है तो शुक्रवार को होता है सिनेमा का मैटिनी शो, तो माधुरी दीक्षित के ही एक फिल्म के साथ जो है आज का कार्यक्रम जो है पूरा होने वाला है। तो डांस ऑफ की बात की है, पुकार फिल्म के डांस ऑफ के साथ साथ दो फिल्मों में ऐसा ही एक बहुत खूबसूरत जुगलबंदी हमने देखी है। कौन कौन सी दो फिल्में हैं उसी में से एक फिल्म का गाना हम सुनेंगे और एक फिल्म की बातें होने वाली है आज 107.1 पर।

0: वाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
0: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: मस्त मुंबई कार्यक्रम में रोशनी आप सभी का फिर एक बार स्वागत कर रही है। शुक्रवार के दिन मस्त मुंबई में होता है सिनेमा का मैटिनी शो। आज जिस फिल्म के बारे में बातें हम करने वाले हैं वो बर्थडे गर्ल माधुरी दीक्षित की ही फिल्म है। इस फिल्म को रिलीज़ हुए 28 साल पूरे हुए हैं। ये फिल्म इतनी खूबसूरत है, इतनी फील गुड फिल्म है और होना ही है क्योंकि इस फिल्म में एक भी विलन नहीं है और इतनी सपनों सी, इतनी फिल्मी ये पूरी पिक्चर है कि इस फिल्म से जब भी देखते हैं बार बार इस फिल्म से प्यार हो जाता है, हर एक कैरेक्टर से प्यार हो जाता है, इतना ही नहीं अपने ज़िंदगी से भी प्यार हो जाता है और उसी के साथ साथ हम अपने आप से भी प्यार करना सीख जाते हैं। तो इतनी प्यार से कूट कूट के भरी हुई इस फिल्म के बारे में बातें होने वाली है आज FM रेनबो पर। बातें शुरू करने के पहले क्यों ना इसी फिल्म के एक बहुत ही खूबसूरत गाने में खो जाए और उसके बाद फिर यहीं पर मिलना है, यहीं पर बातें करनी है। तो आप भी बने रहो और सुनते रहो आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

1997 में रिलीज हुई रोमांटिक म्यूजिकल दिल तो पागल है, राहुल, निशा, पूजा और माया। उफ, ये पहली ऐसी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान और करिश्मा कपूर ने साथ में काम किया है। इसी फिल्म में पहली बार माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर ने भी साथ में काम किया है। और इसी फिल्म में ऐसा हुआ कि पहली बार यश चोपड़ा और माधुरी दीक्षित ने साथ में काम किया है, और उसी के साथ साथ यश चोपड़ा और करिश्मा कपूर की भी ये पहली फिल्म है। तो कई सारे फोर्स जो है इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। और भी कुछ आपको याद आ रहे हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोन कॉल करके मुझ तक आप अपनी बातें जो है इस फिल्म से जुड़ी, माधुरी दीक्षित को अगर आपको विशेष भेजनी है, कुछ कहना है, तो आप ज़रूर कर सकते हो। और उसके बीच जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सूदिंग गानों का जो है वक्त यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसा ही बहुत ही प्यारा सा गाना सपने फिल्म से के और कविता पौडवाल की आवाज़ें।

0: या अशा अज्ञात ऐतिहासिक आणि अनोख्या ठिकाणांच्या मागे दडलेली माहिती तुमच्या समोर आणायची.
1: नितीन साळुंखे यांनी लिहिलेल्या अज्ञात मुंबई या पुस्तकाचं क्रमशः वाचन आम्ही प्रसारित करणार आहोत.
0: तर मित्र हो, हा कार्यक्रम जरूर ऐका. 10 मे पासून सकाळी 7:45 107.1 FM रेनबो वर आणि सकाळी 9 आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवर.
2: मस्त मुंबई कार्यक्रम में आज है सिनेमा का मैटनी शो और आज 15 मई की फिल्म है दिल तो पागल है. इससे जुड़े कुछ फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिए और आपसे भी इस फिल्म से जुड़े ही कुछ फर्स्ट पूछे. और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि आपने ये फिल्म आज तक एक भी बार पूरी नहीं देखी है. और उन्हीं में से एक हैं पंकज महत, क्योंकि लोगों के पास अनगिनत बार देखने का रिकॉर्ड है और उसमें से ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने आज तक नहीं देखी. कोई बात नहीं, आज इस फिल्म से जुड़ी सारी बातें जान लो और देखो, वीकेंड शुरू हो ही गया है तो आपके पास अच्छा खासा वक्त है ये फिल्म जरूर देखना. क्योंकि जो फेमस शामक दावर है उनको बतौर कोरियोग्राफर बॉलीवुड में उनकी ये पहली फिल्म रही है. इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर उत्तम सिंह की ये पहली फिल्म थी और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इस फिल्म के लिए उन्होंने 100 से लेकर 150 ट्यून्स बनाई. और अगर सिर्फ चक धुम धुम इस गाने की बात करें तो सिर्फ इस गाने के लिए 13 अंतरा उन्होंने तैयार किए. तो शामक दावर की कोरियोग्राफी, उत्तम सिंह का इतना खूबसूरत म्यूजिक और उसी के साथ आनंद बख्शी के बोल, ओ माय गॉड, गानों को इसी वजह से 4 चांद लग गए.

चक दुम दुम गाने में श्यामक दावर की कोरियोग्राफी है और बैकग्राउंड में कई सारे जो डांसर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब उन्हीं के स्कूल के उन्हीं के स्टूडेंट्स रह चुके हैं और इसी में से कई सारे स्टूडेंट्स आगे चलकर उन्होंने बहुत बड़ा नाम अपने लिए कमाया है। श्यामक दावर के साथ साथ फारा खान जो है वो भी इस फिल्म की कोरियोग्राफर रही हैं और उन्होंने कुल मिलाकर 4 गाने किए हैं इस पूरे एल्बम से। एक तो टाइटल ट्रैक है दिल तो पागल है, साथ ही भोली सी सूरत, प्यार कर और बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट गाना है, ज़्यादातर सुना नहीं जाता, ज़्यादातर लोग ऐसा लगता नहीं है कि ये फेवरेट हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये गाना जो है इस ट्रैक से सबसे ज़्यादा फेवरेट है।

0: मोबाइल ऐप यानी जानकारियों को आपके पास पहुंचाने का आधुनिक माध्यम ऐप रेडियो, जब ये दोनों एक होते हैं तो जाहिर है दुनिया और करीब आ जाती है। आकाशवाणी मुंबई की संवाददाता चैनल और अस्मिता चैनल वर्षों से अपने श्रोताओं के लिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कोंकणी, गुजराती, उर्दू, सिंधी और कन्नड़ भाषा में कार्यक्रमों को प्रसारित करते आ रहे हैं। अब ऐप न्यूज ऑन एयर के डाउनलोड के जरिए आप संवाददाता अस्मिता, एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड के जीवंत कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एयर और जुड़िए, संवाद कीजिए आकाशवाणी मुंबई के चारों चैनलों से।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: म्यूजिकल और कमर्शियल ब्रेक के बाद रोशनी आप सभी का स्वागत कर रही है आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। अभी अभी अगर आपने ट्यून इन किया है तो बता दूं, मस्त मुंबई में आज के सिनेमा का मैडनी शो में बातें हो रही है बर्थडे गर्ल माधुरी दीक्षित की फिल्म दिल तो पागल है के बारे में। अब दिल तो पागल है फिल्म के बारे में क्या ही बात करें, उसमें शाहरुख खान का चार्म है, माधुरी दीक्षित की खूबसूरती, करिश्मा कपूर का ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस और अक्षय कुमार का बहुत ही प्यारा सा कैमियो, डांस म्यूजिक थिएटर सेटअप है और ये सब कुछ वाकई सपनों सा है, बहुत ही ज्यादा ड्रीमी है। और उसी के साथ इस फिल्म का जो फैशन है वो भी बहुत खास है, 90s का फैशन है लेकिन आज तक बहुतों के लिए ये पूरी तरह हैशटैग गोल्स है। और चाहे वो माधुरी दीक्षित की घुंघरू वाली चूड़ी हो, पिस्तौल श्योक कुर्ते और लहंगा, या फिर निशा का जो एथलीजर स्टाइल का फैशन रहा है, तभी के बॉलीवुड के लिए ये बिल्कुल नया और काफ़ी बोल्ड था। लेकिन चाहे वो पेस्टल कुर्ते हो या फिर एथलीजर स्टाइल, सब कुछ आज मानो हर एक के वार्डरोब का ये हिस्सा है। तो वाकई फैशन भी जो है इस फिल्म का काफ़ी टाइमलेस रहा है, तो सब कुछ वाकई बेस्ट ऑफ बेस्ट रहा है। तो ऐसी और क्या क्या खास है और क्या क्या एकदम बढ़िया है, वो सब कुछ बातें होने वाली है। लेकिन अब एक और प्यारा सा गाना, आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति की।

यशराज बैनर की ये रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म जो है ज्यादातर मुंबई और यूरोप में शूट की गई थी, और वो सीन मुझे यकीन है आप सबको याद है जहाँ पर निशा का कैरेक्टर जो होता है भगवान को कोसने लगता है, उनकी तरफ ही जो है पत्थर उछालने लगता है। और फिल्म मेकर्स ने जब ये फिल्म का जो सीन है शूट करने को शुरू किया तो उन्हें लगा बस 2-3 घंटे और ये सीन पूरा हो जाएगा। जब भी शूटिंग करने शुरू कर देते थे अचानक से तूफान बारिश शुरू हो जाती थी, और ऐसा करते करते जो सोचा था कि 3 घंटे में पूरा हो जाएगा उस बस एक ही सीन को पूरा करने में 3 दिन लग गए। तो शायद 90s में भी तूफान और बारिश की कोई खबर नहीं थी, अचानक से हो जाती थी। 2026 में भी वही हाल है।

अक्टूबर 1997 में जब दिल तो पागल है रिलीज़ हुई थी, ताज़ा रिलीज़ के दौरान ज़्यादातर फिल्म क्रिटिक्स ने इस फिल्म को ज़रा भी पसंद नहीं किया था, लेकिन ऑडियंस ने उस फिल्म को तभी भी पसंद किया है और आज भी पसंद कर रहे हैं। करिश्मा कपूर का जो रोल था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, वो पहले हम सभी को पता है कि कई सारी फिल्म इंडस्ट्री के हीरोइंस ने उसे ठुकरा दिया था। आखिरकार चैलेंज के तौर पर करिश्मा कपूर ने वो अपनाया और इस हद तक कि उन्हें इस रोल के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला है। सिर्फ उतना ही नहीं, तब के कई सारे नामचीन और काफ़ी रिस्पेक्टेड अवार्ड जो है इस फिल्म को मिले हैं और लिस्ट लंबी चौड़ी है। जैसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी इस फिल्म ने जीता है, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, सपोर्टिंग एक्ट्रेस के बारे में तो हमने जान ही लिया, बेस्ट डायलॉग जो आदित्य चोपड़ा के हैं, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन शर्मिष्ठा रॉय का और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह, ये सभी अवार्ड्स इस फिल्म ने जीते हैं। और वाकई फिल्म इतनी खूबसूरत है कि आज भी 28-29 साल हो गए बावजूद बातें जब कर रहे हैं चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान बनी हुई है।

मस्त मूवी में वक्त हुआ है बस एक आखिरी गाने का, और इसी के साथ आज की जो बातें हैं वो यहीं पर पूरी होती है। माधुरी दीक्षित के जन्मदिन के मौके पर आज हमने उन्हीं की फिल्म दिल तो पागल है के बारे में आज के सिनेमा का मैटिनी शो में बातें की। बहुत अच्छा लगा बातें कर। बस उसी फिल्म के टाइटल ट्रैक के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर पूरा होता है। रोशनी आपको मिलेगी ठीक 10 बजे समाचारों के साथ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई का FM Rainbow चैनल। सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं और अब नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, UAE, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज UAE पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप

से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के बीच तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल का दाम 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रुपए प्रति लीटर और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर आनंद नाडकर्णी का आज तड़के थाने में निधन हो गया। वे 68 वर्ष के थे और पिछले सप्ताह हुई शल्यक्रिया के बाद स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं उत्पन्न होने से उनका निधन हुआ। मुक्तांगन व्यसन मुक्ति और पुनर्वसन केंद्र के माध्यम से उन्होंने अनेक युवाओं को समाज की मुख्य धारा में लौटने का कार्य किया। और समाचारों के अंत में, आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रादेशिक विभाग द्वारा समाचारों का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। दस बजे के समाचार पूरे हो गए हैं। 10:02 FM रेनबो पर शुरू हो गया है कार्यक्रम नमस्ते भारत। पिछले घंटे दिल तो पागल है फिल्म से जुड़ी बातें की थी और माधुरी दीक्षित का बर्थडे भी है। साथ ये भी याद आया कि 15 मई यानी आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, तो उस फिल्म की लीड एक्टर्स के बारे में तो हमने इतनी सारी बातें की, लेकिन सपोर्ट के बिना ना ही जिंदगी में अब घर परिवार चल सकता है, ना ही कोई काम हो सकता है, चाहे वो फिल्म ही क्यों ना हो। तो क्यों ना फिल्म की जो सपोर्ट कास्ट है, थोड़ा उन्हें भी शाउट आउट किया जाए, उनका भी जो है मेंशन हम ज़रूर करें। फिल्म की सपोर्ट कास्ट जैसे कि फरीदा जलाल, देवेन वर्मा, अरुणा ईरानी, सुरेश मेनन, राजेश टंडन, श्रुति, ओ माई गॉड, सपोर्टिंग कास्ट भी उतनी ही बढ़िया रही है। फिल्म से जुड़ी बातें तो हो गई, लेकिन नमस्ते भारत में अब एक गाँव में जाना है। आज कौन से गांव में जाएंगे, या फिर ऐसा क्यों ना करें, मई का महीना है, वक्त तो है हमारे पास, मौसम वक्त वक्त पर बदल रहा है, एक के बजाय एक से ज्यादा गांव की सैर कराए, ये सब कुछ साथ साथ होने वाला है। तो बने रहो रोशनी के साथ 107.1 पर।

0: सत्ते पे सत्ता फिल्म में हमने देखा कि कैसा एक घर होता है, एक परिवार होता है जिसमें ढेर सारे लोग होते हैं और इतनी ज़्यादा हलचल होती है। ऐसा भरा हुआ परिवार हमने आज की दुनिया में कहाँ पर देखा है? शायद मेट्रो शहरों में ना हो ये मुमकिन, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो परिवार है वो हमारे भारत देश में ही है। मिजोरम में एक परिवार है जिसमें 167 सदस्य हैं, सभी 4 मंजिली महल में रहते हैं, इसमें 100 कमरे हैं और जो बीवियां हैं वो खाना बनाती हैं, घर की बेटियां सफाई करती है, लगभग सभी के लिए अलग अलग कमरे हैं, लेकिन पूरे घर में रसोई घर जो है केवल एक ही। अब इतने सारे लोग हैं तो इस परिवार का अपना एक स्कूल भी है जहाँ पर गांव के बाकी बच्चे भी आते हैं पढ़ने, और ये परिवार के लोग जो है ख़ास तौर पर परिवार के जो मुखिया है वो पब्लिसिटी से दूर रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को मना कर दिया था उनके टाइटल को, लेकिन ना चाहते हुए भी जो है नाम और शोहरत उनके हिस्से आई ही। और इस गांव में कई सारे पर्यटक हैं, ख़ास तौर पर इनका परिवार देखने चले जाते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वो कितना एकजुटी से एक दूसरे के साथ रहते हैं, बस ये देखने के लिए कई सारे टूरिस्ट पहुंच जाते हैं। तो ऐसा एक बहुत प्यारा सा गांव है और वहां पर इतना एक बहुत ही बड़ा लेकिन भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ परिवार है। अब इतना बड़ा परिवार आज की दुनिया में हमने नहीं सुना है, तो थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक देते हैं, इमेजिन करने लगते हैं, इनके बारे में और भी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त हुआ है एफएम रेनबो पर अब एक ब्रेक का।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का

107.1 पर आप सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। मैं हूँ रोशनी और अब एक विशेष निवेदन। भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए awards.gov.in ये वेबसाइट देखें। प्रस्ताव भेजने के लिए लॉग इन आई डी 8252446702 और पासवर्ड कैपिटल ए स्मॉल यू 779#157 इस प्रकार है। अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है।

0: जाना, वन बिग हैप्पी फैमिली, ये सभी का सपना होता है, लेकिन हकीकत में कई बार हम सभी ने खुद भी कहा है या फिर आसपास कईयों को कहते हुए सुना है कि वो सभी से, हर एक इंसान से, हर एक परिस्थिति से तंग आकर वो कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर उनके अलावा और कोई ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई उनका पसंदीदा पेट हो, पंछियों की आवाज़ें, आसपास हरियाली, एक छोटा सा प्यारा सा उनका घर और उसके अलावा कुछ भी नहीं, वो अपने आप में और प्रकृति में खो जाना चाहते हैं। तो असल ज़िंदगी में क्या ऐसा हो पाना मुमकिन है? सपना तो यही होता है, चाहते तो यही है, लेकिन असल में होना मुमकिन है या नहीं?
1: बाहर से कोई

इस गाने के कुछ देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि बस हम ही हम हो और हमारे अलावा आसपास और कोई नहीं, क्या ये असल ज़िंदगी में मुमकिन है या नहीं। ये वाकई हुआ है असम के भरतनारा गांव में। उस पूरे गांव में केवल एक ही परिवार है, माता पिता और उनके 3 बच्चे। इस गांव में एक भी रास्ता नहीं है, नाव से जो है यहाँ पर दूसरे गांव से कनेक्टिविटी होती है। और जब भी बारिश के मौसम में इसी नाव से घर के जो बच्चे हैं पास के गांव के स्कूल पहुँच जाते हैं। ना कोई रास्ता है, ना बिजली, ना इंटरनेट, कोई भी सेवाएं खास यहाँ पर नहीं है। और इसी के चलते बाकी के गांव वाले हैं कब का ये गांव छोड़ दूसरे गांव शहर जाकर बस गए हैं। लेकिन पिछले 40 से ज़्यादा सालों से केवल एक ही परिवार है। और देखो, इतनी मुश्किलें होने के बावजूद इस घर के बच्चों ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है और आगे की हायर स्टडीज़ भी वो कर रहे हैं। और जब इनकी बातें जान ली तब बचपन का वो डायलॉग जो हमें सुनाया गया था वो याद आया कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं। लेकिन नहीं नहीं, अब ताना सुनने की बारी नहीं है, हम घर परिवार की बातें कर रहे हैं क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। इसी मौके पर अगला गाना और अगले गाने के बाद क्या होने वाला है जानना है तो बने रहो 107.1 पर, जो है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

0: स्मॉल डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

कार्यक्रम में, तो जब पूरे परिवार, बड़े परिवार, छोटे परिवार की बातें हो रही है, तो महेश बहरा राजस्थान से यही कह रहे हैं कि परिवार छोटा हो या बड़ा हो वो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन घर का हर एक सदस्य एक दूसरे की लाइफलाइन हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और घर परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं तो मतभेद ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन अगर मतभेद हो तो परिवार बिखर जाता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना हो, इसके लिए जो है केयरफुल हमें रहना है। महेश, बहुत ही सुंदर बात कही है, और आपकी वजह से मुझे भी एक बात याद आई कि जिस परिवार को हम ढूंढने गए थे पूरे संसार में, जिस प्यार को हम ढूंढने गए थे पूरे संसार में, वो प्यार मिला मुझे अपने ही परिवार में। तो परिवार में बहुत प्यार होता है, संसार के लिए भी प्यार होना ज़रूरी है, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है वो परिवार में ही होता है। और किसी ने तो कहा है ना, इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली। इसी नोट पर आज की बातें रोशनी यहीं पर पूरी कर रही है। आप भी एक दूसरे पर प्यार लुटाते रहो और हर वक्त सुनते रहो आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय, सी यू वेरी सून।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो रहे हैं। सुनते हैं आज के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की अध्यक्षता में इस वर्ष ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास और आर्थिक मजबूती को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के सहयोग और वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट UG पुनर्परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। ये परीक्षा 21 जून को होगी। इससे पहले 3 मई को हुई परीक्षा रद्द कर दी गई है। NTA ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और उनसे कोई अतिरिक्त

शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धन शोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10.5 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुओंग नागनो को हराया। इसी तरह खत्म होते हैं आज के समाचार।

0: बदल कभी वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख ले, मजबूरियों को मत कोस, हर हाल में चलना सीख ले। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज शुरुआत करते हैं ब्रेक फ्री प्रोग्राम की। हाय हेलो सत श्री अकाल वणक्कम केम छे कसकाय मुंबई, मैं हूँ आरजे नमिता आपके साथ और मेरे साथ है
1: हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आरजे गंधर्व।
0: बिल्कुल, और हम दोनों जो है ना आज एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। बस प्लानिंग के दौरान जो है हमारी बातचीत हुई और हमने सोचा क्यों ना हमारे लिसनर्स से भी डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि छुट्टियां तो सभी की चल रही हैं, कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम जरूर बना होगा। तो क्या सोचते हैं आप, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बिल्कुल हमें लिख भेजिए। हमारा जो है नंबर है 8657661071। सुनते रहिए एफएम रेनबो, ब्रेक फ्री प्रोग्राम चल रहा है नमिता और गंधर्व के साथ।

0: आपण रोज पाहतो ती सतत धावणारी आणि कधीही न झोपणारी अशी मुंबई. या मुंबईतल्या अनेक ठिकाणांना आपण रोज अक्षरशः धडकत असतो, पण त्यांच्या मागे दडलेल्या अद्भुत गोष्टी आपल्या गावीही नसतात.
1: तुम्हाला माहिती आहे का, जिथे मुंबईचा इतिहास घडला त्या क्षणांची साक्ष देत आजही ही ठिकाणं उभी आहेत. ही आहे अज्ञात मुंबई.
0: म्हणूनच आम्ही ठरवलं मुंबईतल्या या अशा अज्ञात ऐतिहासिक आणि अनोख्या ठिकाणांच्या मागे दडलेली माहिती तुमच्या समोर आणायची.
1: नितीन साळुंखे यांनी लिहिलेल्या अज्ञात मुंबई या पुस्तकाचं क्रमशः वाचन आम्ही प्रसारित करणार आहोत.
0: तर मित्र हो, हा कार्यक्रम जरूर ऐका. 10 मे पासून सकाळी 7:45 107.1 FM रेनबो वर आणि सकाळी 9 आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवर.
2: को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
3: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू.
2: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध. शर्तें लागू.
3: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन.
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक. एनरिचिंग लाइफ.
4: हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्व और मेरे साथ है आरजे नविता.
5: और हम लोग जो है ट्रिप प्लान कर रहे थे, तो ऐसे ही मेरा बातचीत हुई तो पता चला कि बहुत सारी बातें हमें पता ही नहीं होती कि इजीएस्ट वे भी है ट्रिप्स के बारे में. जब हम निकलते हैं घूमने तो हम क्या करते हैं, बहुत वेल प्लान करने के बाद भी कई बार जब हम डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं तो काफ़ी परेशान होते हैं, और वो परेशानी ना हो इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. फिलहाल जब बातें होती हैं घूमने फिरने की, तो नई जगह की, नए अनुभव की और हॉलीडेज़ की, ये सब बातें ना मन में एकदम जो हैप्पी हार्मोन्स है ना वो जनरेट कर देती है कि नहीं?
4: बिल्कुल.
5: कभी पहाड़ की ठंडी ठंडी हवा और कभी समुंदर की लहरें, कभी सोलो ट्रिप तो कभी दोस्तों के साथ बना एकदम से रोड ट्रिप का प्लान जैसे हमारा बन रहा था.
4: कभी कभी आपने नोटिस किया है, रोड ट्रिप का असली मजा डेस्टिनेशन तक पहुंचने में नहीं होता.
5: हाँ.
4: बल्कि उस रास्ते में होता है जहां गूगल मैप्स भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते
5: हैं. आय हाय, क्या फिलॉसफी है, बढ़िया है.
4: वो अचानक

0: से किसी अननोन टपरी पे रुकना, बारिश में भीगती हुई रोड, विंडो के बाहर भागते हुए पहाड़, और गाड़ी में बजता हुआ आपका फेवरेट गाना।
1: वहाँ गंदर ये तो बोलना पड़ेगा कि इमेजिनेशन जो है ना तुम्हारे वो बहुत ही अच्छा है, बहुत डेकोर किया हुआ है, अच्छा लग रहा है। मतलब पहाड़ भागते हुए दिख रहे हैं, हम नहीं भाग रहे हैं, पहाड़ भाग रहे हैं। इट्स वेरी नाइस। ऐसी खट्टी मीठी बातों के लिए जुड़े रहिए यहीं ब्रेक फ्री पे हमारे साथ। किस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जल्दी से बताइए, क्या क्या प्लानिंग की है आपने वो बताइए, हम आपको बताएंगे कैसे ईजिएस्ट आप वहाँ पहुँच सकते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ FM रेनबो पर, दिल से दिल तक।

मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका

0: एन इवनिंग इन पेरिस, पेरिस जाएं या अपने गांव जाएं, लेकिन सफ़र बहुत ज़रूरी है कि बहुत सुंदर सा सफ़र हो, और चाहे डेस्टिनेशन कुछ भी हो, कहते हैं ना कि मज़ा तो सफ़र का ही होता है।
1: जी बिल्कुल।
0: पहले छुट्टियों का मतलब ये होता था गंधर्व कि हम लोग प्लान करते थे कि गर्मी की छुट्टियां आ गई, चलो नानी के यहाँ जाते हैं। सो अभी भी प्लानिंग्स तो ऑलमोस्ट वही होती है। हाँ। बस प्लानिंग्स में एक चीज आ गई है कि ट्रिप्स पे लोग जाना पसंद करते हैं, वो अपने बड़े बुजुर्गों को भी अपने साथ लेके घूमना ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय घर में बैठ के ताश खेलने के, अंताक्षरी खेलने के। सो वे ऑफ लिविंग जो है वो बदल गया है, वे ऑफ ट्रिपिंग जो है वो बदल चुका है। आज की जो जनरेशन है वो कहती है कलेक्ट मूवमेंट नॉट थिंग्स, है ना।
1: दोस्तों कभी सोचा है जब हम ट्रैवल करते हैं तो सिर्फ जगह नहीं देखते, हम खुद को भी थोड़ा समझने लगते हैं।
0: बिल्कुल
1: ना, एक बार सोचिए आप सुबह सुबह किसी छोटे से पहाड़ी गांव में आपकी आँख खुली है, ना हॉर्न की आवाज़ है, ना नोटिफिकेशन का शोर है, सिर्फ हवा का हल्का सा एहसास है, पेड़ों की सरसराहट है और दूर कहीं से आती चिड़ियों की आवाज़ है। और तब रियलाइज होता है नेचर कभी हमसे कुछ मांगता नहीं, बस हमेशा देता ही रहता है सुकून, साइलेंस और वो क्लैरिटी जो शहर की भीड़ में कहीं खो जाती है।
0: और मुझे शायद बिल्कुल ये जो सिनेरियो बता रहे हो ना, मेरे को याद आ रहा है, वाकई में हमारी नानी के गांव में इसी तरीके का माहौल था। झूले डले रहते थे, आम लगे रहते थे, हम उस पेड़ पे से ही मतलब अपना पूरा दिन जो है एक पेड़ के इर्द गिर्द ही गुजार देते थे, और जो वहाँ की ठंडी ठंडी छाँव, ठंडी ठंडी हवा आती थी वो एक अलग ही सुकून देती थी। इसकी तो बात ही अलग है, वहाँ की खुशबू, मिट्टी की खुशबू या कहें खेत खलिहान उनकी खुशबू आती थी, वो चीज़ जो है अब बहुत करके मिसिंग है।
1: यू नो ऐसी जगह आपको इंस्टा रील्स पे नहीं दिखेंगी।
0: शायद
1: इसीलिए सफर सिर्फ नए प्लेसेस टिक करने का नाम नहीं है, कभी कभी उन जगहों के साथ इतना जेंटली मिलने का नाम है कि वहाँ से लौटने के बाद भी उनकी खामोशी हमारे अंदर जिंदा रहे। ब्रेक फ्री का मतलब सिर्फ कहीं दूर निकल जाना नहीं है, कभी कभी ब्रेक फ्री का मतलब है इस दुनिया को वैसे महसूस करना जैसे वो असल में है।
0: बिल्कुल। और गंधर्व क्या होता है, आज की जो जनरेशन है वो एक्सपीरियंस खरीदना चाहती है, वो कहते हैं कि सनराइज देखना है, ट्रैकिंग करनी है, कैंपिंग करनी है, विलेज टूरिज्म भी उसका एक पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है डिजिटल डिटॉक्स करने की बात, ये सब आज की जनरेशन चाहती है और इसके लिए ट्रैवल करने के लिए निकलती है, ट्रिप्स पे निकलती है। और ट्रैवल अब कोई लग्जरी भी नहीं रह गई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेंटल रिफ्रेशमेंट का एक हिस्सा जो है ये बन चुका है। सो आगे बढ़ते हैं और इस रिफ्रेशमेंट का मज़ा आप कैसे ले रहे हैं हमें लिख भेजिए। हम हैं यहीं FM रेनबो पर, हमारा नंबर है 8657661071। बने रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।
2: डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित,
3: इंटरनेट बैंकिंग,
2: मोबाइल बैंकिंग,
3: व्हाट्सएप बैंकिंग,
2: eKYC,
3: NEFT, RTGS,
2: IMPS,
3: कॉस्मोस रूपे और वीसा डेबिट कार्ड,
2: UPI जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए http://awards.gov.in ये वेबसाइट देखें। प्रस्ताव भेजने के लिए लॉगिन आईडी 8252446704, पासवर्ड है कैप्स ए स्मॉल लेटर यू 779 #157 इस प्रकार। अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है।

0: जी हाँ, ये हंसी ठटाके सुनने के बाद तो ट्रिप प्लान कर ही लेंगे आप, है कि नहीं? फिलहाल बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं आजकल ट्रैवलिंग के, कि उनको आपने सुना तो होगा पर महसूस शायद ही कभी किया हो। लोग सोलो ट्रिप पे भी जाते हैं, सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, खुद के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं और इसे एक बहुत खूबसूरत सा नया तरीका मानते हैं।
1: जी, रोड ट्रिप हमें एक सिंपल सी बात सिखाती है, ज़िंदगी में हर बार सब कुछ प्लान्ड होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी गलत मोड़ भी हमें यादें दे जाते हैं, कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। तो
0: बिल्कुल
1: अगर लाइफ इस वक्त थोड़ी उलझी हुई लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि आप एग्जैक्ट डायरेक्शन लूज कर बैठे हैं, तो शायद समय पैनिक करने का नहीं, बस ड्राइव पे निकलने का है।
0: बिल्कुल। और ड्राइव पे रोड ट्रिप्स की बात करें ना, तो दोस्त होते हैं उनके साथ, हाईवेज पे जाने का मज़ा ही कुछ और है। अच्छा,
1: जी
0: दोस्तों के साथ तो वैसे भी कहीं पे भी बैठ जाए ना, गली
1: जी
0: नुक्कड़ पे भी, तो भी बहुत मज़ा आता है।
1: जी
0: म्यूज़िक
1: बिल्कुल,
0: होता है, एंडलेस बातें होती हैं, कई बार कैंपिंग करते हुए भी यंग
1: नए लोग मिल
0: जनरेशन
1: जाते
0: ज़रूर दिख जाती है।
1: हैं।
0: एक और वेकेशन होता है जिसका नाम है वर्केशन।
1: वोकेशन।
0: वर्क के साथ जो है वेकेशन बनाना, लैपटॉप भी लेके जाते हैं लोग माउंटेन्स पे, मालूम है, और वहीं बैठ के काम भी करते हैं। और जहाँ नेटवर्क का इशू भी आता है तो वो डाल सकते हैं कि भाई नेटवर्क इशू आ रहा है मेरे एरिया में। लेकिन एंजॉय भी करते हैं क्योंकि वो नज़ारे में कभी आप सोच ही नहीं सकते कि हम काम करेंगे। कई बार जिनके काम बहुत क्रिएटिव होते हैं ना, उनके
1: जी,
0: लिए ये आइडियाज़ बहुत अच्छा होता है कि वो किसी
1: उन्हें वो
0: ऐसी,
1: माहौल और
0: हाँ,
1: इंस्पायर करता
0: माहौल में
1: है।
0: जाके काम करें, अपना लैपटॉप लेके वो निकल जाते हैं। इसके अलावा भी एक टूरिज्म होता है, इसे इको टूरिज्म कहते हैं, यानी नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना घूमना, कहीं भी ऐसी जगह घूमने जाना जहाँ जाके आपको बाकी अपनी चीज़ों का इंतजाम ना करना पड़े। यानी हम गए हैं जंगल में, जंगल सफारी के लिए, तो आप ऐसी कोई चीज़ें लेके नहीं जाते हैं जब कि रैपर्स हों कुछ खाने पीने के, फूड बॉटल्स या ये, आप वहीं के नेचर से ही जो चीज़ें आपको उपलब्ध हो रही है उन्हें खाते पीते हैं और
1: जी
0: फिर वो जो
1: जी
0: जंगल का मज़ा है
1: जी
0: ना वो ले पाते हैं।
1: जी
0: तो इसके अलावा भी एक होता है गंधर्व, आपने सुना है क्या वेलनेस ट्रिप के बारे में?
1: वेलनेस ट्रिप, नहीं इसके बारे में तो मैंने नहीं
0: हाँ,
1: सुना,
0: ये
1: आप
0: बड़ा
1: मुझे
0: एक
1: बताइए।
0: नया ही ट्रिप निकला है। योगा रिट्रीट्स जो होते हैं वो इसमें किए जाते हैं, मेडिटेशन कैंप्स होते हैं, हीलिंग के लिए ये वेकेशंस बनाए जाते हैं। यानी जो लोग
1: ओके
0: बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से
1: ओके
0: हताश है, निराश है,
1: ओके
0: वो कहीं ना कहीं अपने लिए स्टेबिलिटी चाहते हैं और शांति की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ डेज का टाइम निकाल कर वो ऐसी जगहों पर प्लान करते हैं जहाँ पे हीलिंग कैंप्स वगैरह लगते हैं। सो ऐसे ट्रैवलिंग के नए नए जो आइडियाज़ हैं वो आजकल चल रहे हैं, आप भी प्लान कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। सुंदर सुंदर गाने लेके आए हैं आज गंधर्व आपके लिए, बने रहिए यहीं FM रेनबो पर।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट

0: रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: जी हाँ, म्यूजिकली ओर्स एफएम रेनबो 107.1, गंधर्व और नमिता आपके साथ हैं और ट्रेवलिंग की हम कर रहे हैं बात। ट्रेवल ट्रिप्स जो होते हैं वो बजट में रहें, ये हर कोई चाहता है। हमारे कुछ लिसनर्स भी हमसे यही कह रहे हैं कि ओवर बजट हो जाने की वजह से हम कहीं जगह नहीं जा पाते। कौन है वो, कौन पूछ रहा है ये बताएंगे गंधर्व
3: जी। पुणे से राकेश माथुर जी पूछ रहे हैं, मुझे लक्षद्वीप जाने का बहुत मन है लेकिन इतनी गर्मी के कारण प्लान नहीं बन पा रहा है और हवाई किराया भी बहुत ज़्यादा है।
2: जी हाँ, बजट में ट्रेवल करना वाकई एक बहुत मुश्किल बात होती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि डेस्टिनेशन अगर पास का रहेगा तो ईजी जाना भी होगा। और ट्रेवलिंग में हम गर्मियों में क्या ट्रेवल करने से थोड़ा बचते भी हैं, जब हम ट्रेवल करें तो एसी प्रेफर करते हैं। तो अगर जैसे लक्षद्वीप जैसी जगह है तो वहाँ बाय शिप वो जा सकते हैं, शिप का रेंट भी उसकी हवाई यात्रा की अपेक्षाकृत थोड़ा कम होता है। फिलहाल जहाँ तक हो सके ये ट्रिप्स अगर पास के रहेंगे तो बहुत बेहतर रहते हैं, अगर दूर तक ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। समुंदर से रिलेटेड है तो हमारा मुंबई कोई कम नहीं है, और आसपास में दमन दीप ऐसी जगह भी है। इंडिया के इंडिया में ट्रेवल करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और हमारी तो अब सरकारी बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो आपके ट्रिप को प्लान भी करके देती है। तो एक ईजिएस्ट वे है, ऑनलाइन सर्चिंग करिए और नए नए जो ऐप और पोर्टल ट्रैवल को लेके बने उनकी रिसर्च करिए। आपको बहुत सारे ऐसे ऐप्स मिलेंगे, इवन गवर्नमेंट ऐप्स भी मिलेंगे जिनके ज़रिए आप बहुत अच्छी ट्रिप जो है और कम सस्ते किराए पर आपको मिल जाती है, बजटेड मिल जाती है वाकई। इसके अलावा ट्रिप की बात करें ना तो बहुत सारे हिडन डेस्टिनेशन भी इंडिया में ही आपको उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसे डेस्टिनेशन हैं जिनके बारे में लोग आमूमन बात ही नहीं कर रहे हैं। आप एक छोटी सी जगह है छिंदवाड़ा, उसके पास में एक जगह है पातालकोट। बहुत कम लोगों ने ये वर्ड जो है वो सुना होगा, लेकिन इतनी प्यारी जगह है, वो काफ़ी नीचे है धरातल में। मतलब हम हमेशा हिल्स पे जाने की बात करते हैं, धरती के नीचे की बात नहीं करते, और ये पातालकोट पाताल में ही बसा हुआ है। कहते हैं कि मतलब आज से कुछ 25-30 साल पहले की बात है, वहाँ जो गांव वाले लोग नीचे रहा करते थे वो उन तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती थी, तो वो वहाँ पे प्रेफर करते थे कि पानी के झरने से जो रोशनी आएगी, मतलब सनरेजेस उससे टकरा के आती थी और उससे वो खेतीबाड़ी करते थे। उतने ही वक्त में जितने वक्त तक वो सनरेजेस आएंगे उसमें वो खेतीबाड़ी करते थे और उसी से उनका जीवन यापन होता था। नमक का स्वाद तक गंधर्व उन्हें नहीं पता था कि क्या होता है, तो वो वक्त से लोग वहाँ पर रहते हैं और आज भी वहाँ रह रहे हैं। वहाँ पे जनरेशन जो है पढ़ी लिखी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है अपनी तरफ से ये सब चीज़ें मुहैया कराने की उन तक, लेकिन क्योंकि वो अप्रोच में बहुत मतलब डीप में जाके रहते हैं वो, तो अप्रोचेबल कोई रोड्स नहीं है जिसका निर्माण अभी हो रहा है। ऐसी भी कुछ जगह रहती हैं जो किसी को पता नहीं होती और आपको मालूम है, हिडन है ये सब चीज़ें, ये कहाँ किसी को पता है। इन सब डेस्टिनेशन का पता कीजिए और यहाँ भी घूमने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम हर चीज़ जो बताई जाती है बस उसी में जा पाते हैं,
3: इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंडिंग पे होता है,
2: ट्रेंडिंग में है जो हम आपस में डिस्कस करके बता रहे हैं। तो अपने कुछ दोस्तों से बोलिए कि क्या कोई ऐसी कोई खास जगह है जो आपने देखी हो। एक और खास जगह मेरे मन में, आपको बताऊंगी इस गाने के उस पार कहां जा सकते हैं। बने रहिए यहीं एफएम रेनबो के साथ।

ऑफकोर्स बड़ी रंगीन दुनिया है, और इस रंगीन दुनिया में एक और ख़ास चीज़ आपको बता दूं, एक हॉलो माउंटेंस जो है वो आप को मिल सकते हैं देखने को गंधर्व। एक्चुअली इस बारे में भी लोग कम बातें करते हैं, ऐसे माउंटेंस भी हैं जिन्हें खेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में ऐसे माउंटेंस हैं और कंट्री ऑफ फेरीज, परियों का देश कहा जाता है तेहरी गढ़वाल जगह जो है उत्तराखंड की, उस डिस्ट्रिक्ट को, तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो कि अछूती हैं और जिन्हें आपने सुना भी नहीं है और कोई वहाँ पे गया भी नहीं है, और ऐसी अंडमान की भी कुछ ऐसी जगह हैं जो अनछुई सी लगती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जी हाँ बिल्कुल, वहीं ज्वालामुखी भी फट रहा है और वहीं वो सुंदर सा नज़ारा भी है, ट्रांसपेरेंट वाला वो बोले पानी, एकदम स्वच्छ पानी भी है। तो इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है भारत में घूमने के लिए, आप यूँ ही ट्रेवल करें, अपने ट्रिप्स को प्लान करें और प्लान करके ही डेस्टिनेशन पर पहुँचें, तो आप जो है ना गर्मी की और बाकी की परेशानियों से बच सकते हैं। फिलहाल म्यूजिक कैफे की तरफ बढ़ते हैं, ये आखिरी वाला गाना ब्रेक फ्री का।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: आप सुन रहे हैं FM Rainbow 107.1 MHz पर. पेश हैं इस वक्त के मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अबू धाबी के लिए रवाना हुए. पीएम मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के आधिकारिक दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है. इस दौरे के दौरान पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों जैसे सहयोग के खास क्षेत्र पर बातचीत करेंगे. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है. कीमत बढ़ने के बाद दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 79.09 रुपीज़ हो गई है, जबकि गाजियाबाद और नोएडा में ये 88 रुपये

0: पैसे किलोग्राम हो गई है। वहीं गुरुग्राम में एक किलोग्राम सीएनजी की नई कीमत 84 रुपये 12 पैसे तय की गई है। प्रख्यात मनोचिकित्सक, लेखक और समाजसेवी डॉक्टर आनंद नाडकर्णी का आज सुबह लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वो 67 वर्ष के थे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी बताया और नाडकर्णी पुणे स्थित मुक्तांगण पुनर्वास केंद्र के संस्थापक और न्यासी रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जाइट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्व और मेरे साथ है आरजे नमिता।
0: जी हाँ, और म्यूजिक कैफे का ये सफर अब शुरू होता है। और म्यूजिक कैफे में आज क्या कमाल की चीज लेके आए गंधर्व?
1: जी हाँ, म्यूजिक कैफे में आज हम सुनेंगे माधुरी दीक्षित जी के गाने, क्योंकि आज बहुत खास दिन है, आज उनका जन्मदिन है। हाँ, और आज सिर्फ माधुरी दीक्षित जी का बर्थडे नहीं है, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज।
0: जी बिल्कुल,
1: यानी अपनों के साथ बिताए गए पलों को याद करने का
0: अच्छा,
1: दिन।
0: कितना अच्छा कोइंसिडेंट है ना, इतनी अच्छी अदाकारा, इतनी अच्छी कलाकारा का जन्मदिन भी है और जो परिवार को लेकर चल दी और अपने डेस्टिनेशन तक भी पहुंची, तो दोनों चीजों का मिक्सचर जो है वो एक में ही देखने को मिल जाता है। और बहुत अच्छा है कि विश्व परिवार दिवस आज के दिन मना रहे हैं और ये परिवार को एक नींव प्रदान करने के लिए बनाया जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो आज के इस म्यूजिकल कैफे में कुछ गीत होंगे माधुरी जी के नाम और कुछ गीत होंगे परिवार के प्यार के नाम। शुरुआत करते हैं एक ऐसे नगमे से जो दिल को मुस्कुराना सिखा दे।

साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: दोस्तों, कुछ कलाकार सिर्फ अभिनय नहीं करते, वो एक एहसास बन जाते हैं। जब भी नाम आता है माधुरी दीक्षित का, तो याद आती है वो मुस्कान, वो अदाएं और वो शानदार डांस।
1: बिल्कुल, और वो शानदार डांस की बात करें ना, तो ये जितनी अच्छी अदाकारा है उतनी ही अच्छी डांसर रही हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। अबोध फिल्म से उन्होंने जो है ना अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन जो उन्हें प्रसिद्धि मिली थी ना तेजाब फिल्म के बाद, उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी।
0: जी।
1: फिर तो राम लखन, परिंदा, कन्हैया, प्रहार, जाने कितनी ही मूवीज आई। और उसके बाद जो फेमस वाली मूवीज जो मैं बाद में रिकॉल करूँ ना, तो हमेशा एक ही चेहरा याद आता है, दिल तो पागल है वाली जो माधुरी दीक्षित है, हम आपके हैं कौन वाली जो माधुरी दीक्षित है, बेटा फिल्म की, दिल फिल्म की। तो ये माधुरी दीक्षित के अलग अलग फेजेज हैं, और उन्होंने इतनी वेराइटी में काम किया, इतने वेरिएशन दिए अपने अदाकारी में कि क्या कहें, और उतने ही उनके डांस फॉर्म्स में दिखाई देते हैं।
0: आज उनके जन्मदिन पर उन्हें म्यूजिकल कैफे की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, और अब पेश करते हैं उनका एक ऐसा गीत जो सुनते ही आपके कदम खुद ब खुद थिरकने लगते हैं।
1: बिल्कुल।

0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, म्यूजिक कैफे है, मैं हूं नमिता, मेरे साथ है गंधर्व।
4: हेलो दोस्तों,
3: हम जो है माधुरी दीक्षित के जन्मदिन की बातें कर रहे थे, उनका ये गाना अभी सुना हमने, तेजाब फिल्म का गाना था। वाकई आज भी पांव थिरकने लगते हैं ये गाना सुन के।
4: जी बिल्कुल,
3: बहुत खूबसूरत जो है वो डांस भी इसमें किया है उन्होंने। और आपको मालूम है 2008 में भारत सरकार ने उन्हें, माधुरी दीक्षित को, चौथा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया है। और बचपन से ही जो माधुरी दीक्षित थी ना, वो डॉक्टर बनना चाहती थी और इसीलिए जो है ना उन्होंने डॉक्टर नेने से शादी की। सो कहीं ना कहीं अरमान जब अपन हम खुद पूरे नहीं कर पाते।

0: तो मे बी उस जगह पे वो किसी और
1: डेस्टिनी
0: को
1: पूरी
0: रख
1: कर
0: रही है।
1: देती है।
0: हाँ,
1: हाँ
0: वो उनकी किस्मत है कि उनको इस तरीके से
1: बिल्कुल
0: अच्छा परिवार और अच्छा घर मिला और बहुत अच्छे हस्बैंड मिले। और वही चीज़ जो परिवार वाली जो उनकी मैं बात कर रही थी, वो आज भी अपने परिवार को लेके संभाल के चल रही हैं और अपने करियर को
1: जी हाँ
0: भी दूसरे हाथ से।
1: दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन अगर कोई है तो वो परिवार है।
0: बिल्कुल
1: वो लोग जो बिना कहे हमारी हर बात समझ लेते हैं, जो हमारी जीत पर सबसे ज्यादा खुश होते हैं और हार में सबसे पहले साथ खड़े होते हैं।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, पर अपनों के लिए वक्त निकालना सबसे ज़रूरी है। तो अगर आज मौका मिले, एक कॉल कीजिए, एक मैसेज भेजिए और कह दीजिए आप मेरे लिए बहुत खास है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा फैमिली सॉन्ग।

0: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और मैं और गंधर्व आपसे बात कर रहे हैं विश्व परिवार दिवस के बारे में. परिवार एक ऐसी जगह होता है गंधर्व, जैसा मैं सोचती हूँ, कि जहाँ पे लव, केयर और रिस्पेक्ट, ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ मिलती है, तो ये टुगेदरनेस का जो फीलिंग है वो आने लगती है. अगर वो नहीं आती तो परिवारों में कहीं ना कहीं टूटन होना बहुत शुरू हो जाता है और वो बड़े डिस्प्यूट्स पे बदल जाता है.
1: जी, रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी रिश्ते में.
0: जी.
1: और कभी सोचा है दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी एक प्लेलिस्ट जैसी होती है. कुछ गाने हमें बचपन की याद दिलाते हैं, कुछ दोस्ती की, कुछ प्यार की, कुछ अपने परिवार की. और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही माधुरी दीक्षित की मुस्कान याद आ जाती है. आज का दिन खास है क्योंकि इसमें सितारों की चमक भी है और रिश्तों की गर्माहट भी. आज अपने दिल की प्लेलिस्ट में थोड़ी फैमिली जोड़िए, थोड़ी नॉस्टैल्जिया और ढेर सारा म्यूजिक. चलिए सुनते हैं अगला गीत जो सीधे दिल से झूंझता है.

0: आ गए जी, आ गए, हम भी आ गए वापस। और फूलों का जो ये शहर बसाने की बात करते हैं, ये सबके मन में ये सपने होते हैं, और ऑलमोस्ट जितने यंग जनरेशन वाले लोग हैं जिनकी शादी होने वाली है उनके मन में लड्डू फूटते रहते हैं। लेकिन ये जो संसार हम बसाते हैं वो सिर्फ एक सपनों का शहर नहीं होता, बल्कि हमारे दिल में एक छोटी सी इच्छा होती है कि हमारा कंपेनियन जो है वो हमारे साथ इस तरह से चले कि हर जगह जो है फूलों वाले जो नज़ारे हैं वो हमें दिखाई दें। पर कई बार हमें हमारे अपोजिट्स भी मिल जाते हैं, यानी कि जो उस कदर उतने मीठे, उतने ज़्यादा क्या कहेंगे कि अट्रैक्टिव नहीं होते या उस कदर अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परिवार वाली बात जब आती है तो हम एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को अपनाते हैं, तभी परिवार बनता है कि नहीं?
1: जी बिल्कुल, संगीत और परिवार दोनों हमें दोनों हमारे लिए एक समान है, दोनों हमें जोड़ते हैं, संभालते हैं और मुश्किल वक्त में सहारा बनते हैं।
0: बिल्कुल, परिवार तो एक ऐसी नींव है कि इंसान अगर किसी भी जगह से धोखा खा ले तो वो लौट के आके अपने परिवार को ही बताता है और उसी में सहारे ढूंढता है।
1: तो आज का छोटा सा संदेश, अपनों को वक्त दीजिए और जिंदगी में संगीत बनाए रखे। चलिए म्यूजिक कैफे का आखिरी गाना सुनते हैं और उसके बाद हम सुनेंगे आज के ठीक 1 बजे आज के राष्ट्रीय समाचार, और उसके बाद हम आपके रिक्वेस्ट किए हुए गाने प्ले करेंगे। तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप पे हमें आपके गानों की रिक्वेस्ट भेजिए। चलिए सुनते हैं अगला गाना।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: जी हाँ, म्यूजिकली योर्स एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पे आप सुन रहे हैं मुझे यानी नमिता को, और मेरे साथ है गंधर्व।
2: हेलो दोस्तों।
1: सो हिट एंड हॉट का सफ़र जारी होता है, और आप सभी जो सुनने वाले हमारे श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी के नाम लूँगी, लेकिन पहले वो वाली पज़ल जो आप तक मुझे पहुँचानी है, जिसका आप जल्दी जल्दी मुझे जवाब लिख के देने वाले हैं। जी हाँ, तीन वर्ड्स आपको बोलूँगी, आपको पहचानना है फिल्म का नाम, इन तीनों शब्दों का उस मूवी से कुछ ना कुछ लेना देना है। सो ये है मुंबई, बम और पत्रकार। जी हाँ, ये तीन शब्दों को एक साथ जोड़ तोड़ करके देखिए कौन सी मूवी की कहानी है जो इन तीनों को मिलाकर बनी है। जल्दी से लिख भेजिए कहाँ पर, 8657661071 पर। फिलहाल हमारे साथ जो हमारे लिसनर्स जुड़े हैं उनके नाम ज़रूर लूँगी इस सफ़र में। हमारे साथ ही चलने वाले हैं चेतन कुमार जी, राकेश माथुर जी, मेहर अरोरा, राम प्रजापति, विजेंद्र, प्रणव प्रकाश जी, प्रमोद जी, संदीप जी, फिरोज जी, पंकज जी, अशोक पाटिल जी, सुरेश जी, संजय जी, प्रिया जी, आर्यन सोमवंशी, राजेंद्र परमार जी, महेश जी, अंजू जी, बाबा जी और मंगेश जोशी जी, रजनीकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपकी पसंद के गाने ज़रूर बजवाए जाएंगे, और सबसे पहला जो गाना है ये हम सुन रहे हैं, अमरावती से लिख रहे हैं हमारे श्रोता भाई पंकज जी, हमें जो गाने की पसंद भेज रहे हैं इसे इस वक्त हम प्ले करेंगे। आप बने रहिए यहीं एफएम रेनबो पे, दिल से दिल तक।

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर. अशोक जी के पसंद का ये गाना आपने अभी अभी सुना. और इस सफ़र में आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि हमारी जो पज़ल थी उसका सही सही जवाब भी फटाफट आ गया है. सो जल्दी जल्दी जवाब देने वालों में जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं लिसनर, इन्होंने दिया है राकेश माथुर जी ने हमें सबसे पहले जो है वो सही जवाब दिया है. अच्छा, पूछा था मैंने आपसे कि मुंबई बम और पत्रकार ये तीनों चीज़ें किस एक फिल्म में आपको देखने को मिली है, तो सही जवाब है वेडनेसडे. और ये मूवी का नाम जो है सबसे पहले राकेश माथुर जी ने हमें सही सही लिख भेजा है. उसके अलावा भी कई सारे लोगों ने लिख भेजा है, लेकिन राकेश माथुर जी की पसंद का गाना तो अब बनता ही है. सो बने रहिए यहीं एफएम रेनबो पर अगली पजल के इंतज़ार में. इस गाने के उस पार पूछूंगी ज़रूर दिल से दिल तक.

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो पर हिट एंड हॉट प्रोग्राम, और गंधर्व और मैं आपके साथ जुड़े हुए हैं। और अगले जो है 1:30 पर आप समाचार सुनेंगे, उसके पहले आपको एक और पजल छोड़े जा रही हूँ। बिल्कुल पता कीजिएगा, पजल में फिर 3 शब्द हैं, आपको बताना है फिल्म का नाम। क्रिकेट, सस्पेंस, कबीर। जी हाँ, क्लियर क्लियर पिक्चर है बिल्कुल। कौन सी मूवी है जो क्रिकेट पर आधारित है, सस्पेंस भी है और कबीर भी है इसमें? जल्दी से लिख भेजिए, हमारा नंबर है 8657661071। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, बने रहिए यहीं एफएम रेनबो के साथ।

0: जी हाँ, म्यूजिकल यूर्स एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पे नमिता और गंधर्व,
1: आरजे गंधर्व।
0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं हमें और हिट एंड हॉट आपका अपना प्रोग्राम है, आपकी पसंद के गाने बजते हैं। विजेंद्र जी की पसंद का गाना अभी आप सुनने वाले हैं, लेकिन हमारी पजल जो है वो एक बार रिपीट कर देते हैं।
1: जी हाँ, एक मजेदार पहेली थी, रिडल थी, पजल थी जो आरजे नमिता ने आपको दी थी। एक मूवी का नाम आपको पहचानना था, तीन वर्ड्स थे, सस्पेंस, क्रिकेट और कबीर।
0: बिल्कुल,
1: सबने 83 लिखा है, कुछ लोगों ने लिखा है इकबाल, कुछ लोगों ने लिखा है कुछ और।
0: सो अभी तो तक सही जवाब जो है वो नहीं आया है। बिल्कुल, थोड़ी देर आपको दे रहे हैं, बिल्कुल फटाफट से लिख भेजिए सही वाला जवाब। बाकी हमारे जो लिसनर्स अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके नाम ले लेती हूँ। शुभ लक्ष्मी जी, अभिजीत जी, साथ ही अशोक पाटिल जी और मेहर अरोरा जी, ईश्वरी जोग जी हमारे साथ जुड़े हैं और योगेश जी हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, राजेश जी हमारे साथ हैं, राम प्रजापति जी हैं और जो पहले हमारे साथ जुड़े ही थे, सुरेश जी, फिरोज जी, संजय जी, प्रिया जी, राजेश जी, दिग्दर्शन जी और संदीप कुमार, पंकज मोहिर, प्रणव जी, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और इस पहेली का जल्दी से जवाब लिख के भेज दीजिए। फिलहाल विजेंद्र जी की पसंद का ये वाला गाना आ रहा है।

0: गजल का सही जवाब जो है दो दो हमारे सामने आए हैं, जर्सी है और 83 है, जो कि नॉट आउट 83 के नाम से भी जानी जाती है, तो फिल्म का नाम ये दोनों ही हो सकता है। तो सही जवाब तो हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने हमें दिया है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहूँ कि किसने सबसे पहले जवाब दिया, तो तीन नाम आ रहे हैं सामने, महेश शेट्टी जी, प्रमोद जी, राकेश माथुर जी। तो आप सभी की पसंद के गाने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बजा ही देती हूँ मैं। और जाने से पहले आपके पसंद के गाने और छोड़ के जा रही हूँ, गंधर्व भी टाटा बाय बाय करने की फिराक में बैठे हैं,
1: जी
0: सो माइक ओवर टू यू।
1: हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपके पसंद के गाने सुन के, आपके फरमाइशों से माहौल बन गया।
0: बिल्कुल। और कहा जाए ना, माधुरी दीक्षित जी का बर्थडे जो है, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं
1: जी
0: उन्होंने बड़ी बखूबी बनाया, एक के पीछे एक वही गाने बज रहे थे जो ज़्यादातर माधुरी जी की फिल्म के हैं।
1: जी जी
0: सो
1: जी
0: हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनकी तरफ से भी माधुरी जी को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और अभी जो गाना आपने सुना था वो प्रणव शिंदे जी की पसंद का था, और अगला जो गाना आप सुनने जा रहे हैं ये आप महेश शेट्टी जी की पसंद पर सुनने जा रहे हैं। इसके बाद संदीप कुमार जी की पसंद का और विजयन जी की पसंद के गाने हम बजाने की कोशिश करेंगे। समय की पाबंदी है, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। अभी तक आपने हमारा जो साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट फिर मिलेंगे, यही कहकर आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।

0: Stadium in Dharamshala last night, Tilak Varma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosho elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
3: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक

0: इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
3: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
5: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की अलीना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो IPL में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को

0: 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी मुंबई के 107.1 FM रेनबो पर कार्यक्रम लव यू जिंदगी में। आज आपके साथ हूं मैं, आपकी आरजी दोस्त संतोष, और आज मैं अपने परिवार यानी आप लोगों से मिलने आई हूं, क्योंकि आज है विश्व परिवार दिवस और पूरे दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्राम कार्यक्रम आप लोगों ने इस विषय पर सुने होंगे। तो लव यू जिंदगी कार्यक्रम में, लव यू फैमिली ऐसे कह सकते हैं, तो इस कार्यक्रम में आप भी अपने परिवार से जुड़ी हुई कुछ बातें अगर हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर साझा कर सकते हैं कि कब कहाँ कैसे परिवार का साथ आपको बहुत ज़रूरी कदम रहा, परिवार का कहाँ आपको कैसे कब संभाला गया, कब आपका साथ दिया गया। वैसे तो ज़िंदगी के हर पड़ाव पर, हर मुकाम पर, हर बात में, चाहे वो खुशी हो चाहे गम हो, परिवार साथ खड़ा रहता है और तभी तो ज़िंदगी का सफ़र आसानी से कट पाता है ना।

0: मुंबईला कोणी माया नगरी म्हणतं, स्वप्न नगरी, तर कोणी म्हणतात रावणाची दुसरी लंका. तर ह्या मुंबईच्या कानाकोपऱ्यातल्या अज्ञात अशा काही गोष्टी घेऊन आम्ही तुमच्या भेटीला येतोय लवकरच.
1: या अज्ञात गोष्टी लिहिलेल्या आहेत लेखक नितीन साळुंके यांनी, याच्या सादरकर्ते आहेत ज्योत्सना केतकर, आणि याचे सादरकर्ते आहोत म्हणजेच वाचक नट आहोत मी अक्षय शिंपी आणि नेहा कुलकर्णी. या अज्ञात कथा आकाशवाणीच्या रेनबो आणि अस्मिता वाहिनीवर या दोन्ही ठिकाणी आपल्याला ऐकता येणार आहेत, त्यामुळे जोडलेले राहा. भेटूच
0: लवकरच. तो सुनते रहिए FM रेनबो चैनल, लव यू जिंदगी कार्यक्रम शुरू हो चुका है और चैनल पर बहुत तरह के अलग अलग कार्यक्रम हम आपको सुनवाते रहते हैं और आप लोग भी हमारा साथ देते हैं और बढ़िया बढ़िया गीतों की फरमाइश भी आप करते हैं जब फरमाइशी प्रोग्राम होता है तब. और जब ये सब बातें मिलती हैं तो यही सब मिलकर बनता है एक बढ़िया परिवार. कहते हैं कि रिश्तों की खुशबू से महकता है घर का हर कोना, रिश्तों की खुशबू से महकता है घर का हर कोना, वरना ईंटों की दीवारों में कहाँ होता है खिलौना. परिवार केवल साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने का, संभालने का और अपनाने का नाम है. यहीं से इंसान को संस्कार मिलते हैं और यहीं से इंसान रिश्तों की अहमियत सीखता है. और तभी तो कहते हैं कि परिवार, ये जो परिवार होता है हमारा, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है. तो ज़िंदगी में जब कहीं कोई मुकाम ऐसा आता है कि जब हम टूटने लगते हैं, हारने लगते हैं, तब यही परिवार हमारे साथ खड़े होकर हमें चलने के लिए प्रेरित करता है.

कितनी भी तेज क्यों ना हो, जीवन की राहों में माँ बाप की दुआएं हमेशा छांव बन जाती हैं। और परिवार की बात करें तो परिवार वही ताकत है जो टूटे हुए मन को फिर से हिम्मत देना जानता है। अपनों का साथ इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। कहते हैं कि घर की रौनक केवल सामान से नहीं बल्कि रिश्तों की मिठास से होती है। थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी हंसी, थोड़ी सी तकरार होती है, यही तो हर परिवार की सबसे प्यारी पहचान होती है। जब परिवार साथ बैठकर बातें करता है तो मन का बोझ हल्का हो जाता है ना। अपनों के बीच बिताया गया समय ही जीवन में सबसे सुंदर पल बन जाता है। और उन पलों को जब सब साथ नहीं होते हैं तभी भी उन पलों की याद से चेहरे पर खुशी छा जाती है। और परिवार में अगर कभी किसी को तकलीफ होती है, दुख होता है, तो परिवार का दूसरा सदस्य उसे झेल नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, तो उस कष्ट से, उस दुख से अपने परिवार को निकालने की बखूबी कोशिश भी करता है।

बिल्कुल, जीवन चलने का नाम है, और जो रुक जाता है वो पिछड़ जाता है और फिर वो उस मंजिल को कंप्लीट नहीं कर पाता है, और अगर करता है तो बहुत देर हो जाती है। तो जीवन की राह कभी आसान होती है तो कभी कठिन होती है, लेकिन जब अपने साथ हों तो मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं।

0: विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 च्या कलम 12 नुसार पात्र नागरिक निशुल्क कायदेशीर मदत न्याय बंधू या मोबाईल ऍप वरून किंवा www.robono-doj.in या वेबसाइट वरून मिळवू शकता।
1: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
2: पगली जीपीएस फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
1: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
2: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
1: हाय, ये है एफएम रेनबो 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
2: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यर्स। ओ जी।

0: एफएम रेनबो को रंगी बनाएंगे। सुनते रहिए 107.1 एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
1: आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं। लव यू जिंदगी कार्यक्रम चल रहा है और आज हम परिवार की बातें कर रहे हैं क्योंकि विश्व परिवार दिवस है। सभी को बहुत शुभकामनाएं कि उनका सबका, हमारे सारे श्रोताओं का परिवार बरकरार रहे और परिवार में एक दूसरे से मोहब्बत बनी रहे। और ये जो हमारा परिवार होता है ये हमें केवल प्यार ही नहीं देता है बल्कि हमें जिम्मेदारी भी सिखाता है और समय समय पर अगर हम अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते रहें तो जीवन में सुकून और आनंद आ जाता है।

परिवार की बातें परिवार से हो रही थी, यानी आप सब हमारे परिवार हैं और हम भी आपके परिवार हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जूथानी कांदीवली वेस्ट से, मुंबई से आप लिख रहे हैं कि कॉलेज के जमाने की याद दिला दी, कैंटीन में चाय पीना उन्हें याद आ गया। प्रदीप अनंत कृष्णन जी लिखते हैं कि बहुत अनमोल गाने हैं। और वहीं रेनबो परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं लिखते हैं धनंजय घोलप जी वाशी नवी मुंबई से। वैदेही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वैदेही जी आपका स्वागत है। राजेंद्र जूथानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें कॉलेज के दिनों की याद आ गई और कैंटीन के चाय की याद आ गई। और चाय का समय भी है तो जहां पर उपलब्ध हो, अगर घर से बाहर हैं तो चाय पी लीजिए, और अगर घर में हैं तो फिर क्या बात है, बनाइए और सबको पिलाइए। और पंकज मोहोड अमरावती से लिखते हैं कि संतोषी आपने मुझे बचपन में अपने परिवार का साथ जो मिलता था उसकी याद दिला दी, और हर पल हर घड़ी परिवार साथ रहा, परिवार का बहुत प्यार मिला क्योंकि ये घर में सबसे छोटे थे, कई भाई बहन थे, तो परिवार का जो प्यार है वो तो सच में कभी भुलाया नहीं जा सकता है पंकज जी। और लोग अपने कर्म क्षेत्र में इधर उधर जो है हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं जॉब के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इधर उधर होते हैं, लेकिन परिवार तो परिवार ही होता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो साथ खड़ा हो ही जाता है ना। और संजय दर्शन जी लिखते हैं कि जो परिवार एक रहा है, नेक रहा है, वही आगे बढ़ा है। परिवार एक होने से सुख संपत्ति संतोष और सहारा मिल जाता है। आपको और पूरे रेनबो परिवार को विश्व परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे परिवार में सबकी बातें रखी जाती हैं, सुनी जाती हैं, और योग्य है अगर वो बातें तो अमल भी की जाती हैं। शाम का एक बार का खाना परिवार में साथ बैठकर खाने का नियम है, और हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दीवालों से ना, दरवाजों से घर बनता है, घर वालों से। बहुत अच्छा लिखा है संजय दर्शन जी, और इन शब्दों के पीछे बहुत गहरा भाव होता है। प्रकाश शिंदे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बोलते हैं कि दुनिया में एक छोटा सा परिवार है, प्यारी सी दुनिया है, और जो है कहते हैं कि रोज़ कोई त्यौहार जैसा लगता है जब परिवार में खुशियाँ आती हैं, और परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है, कोई धन नहीं होता है, कोई परिवार के बिना सब कुछ अधूरा।

है, तो अपनों का साथ बनाए रखें। जी हाँ बिल्कुल, जब संयुक्त तो परिवार होते थे तो कितना जो है लोग खुश रहते थे, स्वस्थ रहते थे। अब जैसे जैसे एकल परिवार होते जा रहे हैं तो बहुत भाग दौड़ होती जा रही है जिंदगी में, लेकिन समय की मांग यही है, तो फिर क्या किया जा सकता है। तो लोगों को समय के साथ चलना पड़ता है और हमें भी समय के साथ चलना पड़ता है, और जिंदगी की यही रीत है कि समय के साथ ही चले।

जिंदगी में हार और जीत तो लगा ही रहता है। इंसान कभी हारता है, कभी जीतता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी धूप, कभी छांव, ये सब चलता रहता है। हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, कुछ लोगों को बातें बहुत पसंद आ रही हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की हौसला अफजाई से हमें भी हिम्मत मिलती है और हमें भी आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगता है। सुनते रहिए FM रेनबो। आपको बता दें कि भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए http://awards.gov.in इस वेबसाइट पर देखें। प्रस्ताव भेजने के लिए लॉगिन आईडी है 8252446 7042 और पासवर्ड है Capital A Small U 779/157 इस प्रकार है। अंतिम तारीख है 31 जुलाई 2026। आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम लव यू जिंदगी लव यू फैमिली सुन रहे हैं। और फैमिली का, परिवार का जो प्यार होता है, ये इंसान को हर पल इसकी ज़रूरत होती है। और जो घर होता है वो परिवार से बनता है। घर वही सुंदर लगता है जहाँ सम्मान की रीत हो, बड़ों का आदर हो और छोटों से प्रीत हो, बड़ों का अनुभव और छोटों की मुस्कान दोनों मिलकर घर को खुशियों से भर देते हैं। परिवार में प्रेम और धैर्य बनाए रखना हर सदस्य का कर्तव्य होता है। और जिंदगी में हमें तभी जो है एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान और जिम्मेदार नागरिक माना जाएगा जब हम दूसरों को भी सहयोग करें और उनके चेहरों पर भी मुस्कान लाएं।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
4: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
1: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
0: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।
5: दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के।
0: FM रेनबो आप सुन रहे हैं, लव यू जिंदगी कार्यक्रम चल रहा है। जहां तक परिवार की बात करें तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनों के लिए समय कम निकाल पा रहे हैं। मोबाइल की दुनिया ने बातचीत के पल भी कम कर दिए हैं। घर में सब लोग साथ तो रहते हैं मगर दिलों में अपनापन रहे ये जरूरी तो नहीं है ना। ये जरूरी है, दिलों में अपनापन रहना जरूरी है। थोड़ा सा समय परिवार के साथ बिताइए और क्योंकि यही पल आगे चलकर कीमती यादें बनते हैं। रिश्तों को संभालना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। विश्व परिवार दिवस में यही संदेश देता है कि रिश्तों की गर्माहट को कभी कम ना होने दें। जिस घर में प्रेम का दीपक जलता है हर शाम, उस घर

में खुशियां खुद लिखती हैं अपना नाम। इसीलिए अपने परिवार को समय दें, रिश्तों में विश्वास और अपनापन बनाए रखें, क्योंकि परिवार ही वो नींव है जिस पर खुशहाल जीवन और एक बेहतर समाज खड़ा किया जा सकता है। हमारे साथ बहुत सारे हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं। राकेश माथुर जी जुड़े हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। फिरोज़ सिगनपुरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनको हमारी प्लेलिस्ट, हमारे गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल प्लेलिस्ट लिखा है इन्होंने। और अशोक पाटिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक पाटिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी इवनिंग आपको भी। वैदेही जी हमारे साथ हैं और विजेंद्र घाटोल अकोला से हैं, प्रणव शिंदे हैं, सोनवने फूलचंद हैं, जो ये भी इन्होंने लिखा है कि परिवार तो दादा दादी और नाना नानी के बगैर अधूरा रहता है। और बिल्कुल सही कहा आपने, परिवार में सब लोग हों तो कितना अच्छा लगता है। जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ होते हैं तो ज़िंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। और एक और गाना आपको सुनवाते हैं और उसके बाद जो है 6:05 पर आप सुनेंगे समाचार मराठी भाषा में। लेकिन गाने से पहले एक प्रोमो आपको सुनवाते हैं, बहुत ज़रूरी है, सुनते रहिए। और जिस प्रोग्राम के बारे में इस प्रोमो में बात की गई है वो प्रोग्राम ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है, बहुत उम्दा है।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।
2: दिल से सुनती आये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो।
3: दोस्तों, कभी ये गौर किया है कि चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे जहां रहें, चाहे पशु पक्षी ही क्यों ना हो, वो सब प्रेम की भाषा ही समझते हैं। और इस जीवन में क्या रखा है, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो, जलन ईर्ष्या और क्रोध करने वाले खुद ही अपना खून जलाते हैं। इसलिए खुश रहिए और मीठे बोल बोलिए, क्योंकि जो आप लोगों से व्यवहार करेंगे, जो उनसे बोलेंगे, यही जीवन में बचता है। बाकी जीवन तो एक दिन सबका समाप्त होना ही है। इसलिए खुश रहिए और मीठे मीठे बोल बोलिए हर किसी से।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अंदाज़े बयां कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में अलग अलग शायरों के अलग अलग जज्बात पिरो कर जो माला बनाई है उसे आपके लिए पेश करेंगे। आपके साथ मैं हूं आपकी आरजे दोस्त संतोष, और आपके जज्बात और हमारे जज्बात इन गीतों के साथ, इन गज़लों के साथ, इन शब्दों

के साथ, इन शायरियों के साथ मिल जाते हैं। आपके पास भी कोई बहुत उम्दा शायरी हो जो दिल के करीब हो आपके, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कहते हैं शब्द जब दर्द से मिलते हैं तो शायरी जन्म लेती है, और जब शायरी का जिक्र हो तो मिर्ज़ा गालिब का नाम अपने आप सुबह पर आ जाता है, है ना। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तगाफुल का मतलब है कि नाराज़।

कि शायरी केवल पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है, उनके अल्फाज आज भी तन्हाई में साथी बन जाते हैं। तो इन शब्दों की जो ताकत है वो दिल के किसी कोने तक पहुंचती है। और आपको सुनवाते हैं गालिब साहब की ही कलम से निकले हुए कुछ जज्बात, तर्ज और आवाज़ है जगजीत सिंह जी।

कुछ शायर सीधे दिल से बात करते हैं और गुलजार उन्हीं में से एक हैं। उनकी शायरी में खामोशी भी बोलती है। छोटे छोटे शब्दों में बड़े बड़े एहसास बयां करना, यही गुलजार की पहचान है। कहते हैं कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। बहुत गहरे गहरे मायने हैं कि जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है, जिंदगी चल रही है, लेकिन तेरे बिना जिंदगी जिंदगी तो नहीं। जी हाँ, जो एक चुभन रह जाती है, एक टीस रह जाती है, एक खालीपन रह जाता है, वो ज़िंदगी में कोई और कहाँ भर पाता है। जैसे कि जो हमारा बचपन होता है, जो हमारा बीता हुआ समय होता है, जो हमारी पिछड़ी यादें होती हैं, वो भी तो हमारे जीवन में एक टीस पैदा करती हैं और उनकी यादें हमेशा हमें सताती भी हैं। ये कौन सी यादें हैं? ये यादें जो अब आप सुनेंगे, ये सबके दिलों में रहती हैं।

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप। हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद केतकर जी ने खंडाला से हमें कॉल किया और उन्हें गजलें बहुत अच्छी लग रही हैं। जगन्नाथ केदारे जी ने भी हमें खंडाला से कॉल किया और जो है हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं। फिरोज सिगनपुरिया जी, विजेंद्र घाटोल जी अकोला से, अजय साखरे जी इंदौर से, बहुत दिनों के बाद अजय साखरे जी का मैसेज दिखा है, पंकज होड़ जी, अनंत प्रदीप, अनंत कृष्णन जी, संजय दर्शन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अशोक पाटिल वराली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का वरली कोलीवाड़ा से जुड़े हुए हैं राजेश जी और अशोक जी, तो आप सभी का अशोक पाटिल और राजेश मोरे ये हैं दोनों, तो आप दोनों श्रोताओं का भी स्वागत है और कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बस बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं ये सूचना और उसके बाद फिर गजलों का कारवां चलता रहेगा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र।

0: इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

किस दर्जा दिल शिकन थे मोहब्बत के हादसे, किस दर्जा दिल शिकन थे मोहब्बत के हादसे, हम जिंदगी में फिर कोई अरमान न कर सके। ऐसे शब्द जब कलम से निकलते हैं तो सीधे दिल में पहुंचते हैं। साहिर लुधियानवी ने मोहब्बत को भी लिखा और समाज की सच्चाई को भी लिखा। उनकी कलम में दर्द था, लेकिन वो दर्द इंसानियत से भरा हुआ था। साहिर के शब्द आज भी वक्त की धूल से अछूते हैं, वो ज्यों के त्यों चमक रहे हैं, क्योंकि उनके चमक की उनकी गहराई इतनी है कि वो चमकते हैं। उनकी शायरी दिल को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो ऐसे कुछ अलग अलग शायरों की बातें उनकी जो है कलम से निकले हुए जब जज्बात हम पढ़ते हैं तो हम सब भी बड़े जज्बाती हो जाते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और अब जो आवाज़ आप सुनेंगे ये आवाज़ है मेहदी हसन साहब की।

0: रंगों में डूबी हुई रंगीन बातें,
1: मस्ती में उछलती खूबसूरत आवाजें,
2: म्यूजिक इंटरव्यूज और बेहतरीन तराने,
3: एंटरटेनमेंट का हब सुने हम सब।
4: मुंबई का नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो का FM रेनबो आपका हम सफर, आपका हमराही, म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।
5: शाम का सुकून है, सुहानी सी ये शाम है, और इस सुकून भरे माहौल में जब इतनी राहत देते ये शब्द, ये जज्बात हमारे दिल को जैसे सहलाते हों तो कितना अच्छा लगता है। ना कोई भाग दौड़, ना कोई अफरा तफरी, बस पूरा दिन जो है कर्तव्यों में बिताकर अपने अपने आशियाने में कुछ बैठे हैं, कुछ अपने आशियाने की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे में जो ये शब्द हैं ये हमारे दिल के भाव जब छूते हैं तो लगता है कि जैसे हमें सहला रहे हों। और ज़िंदगी में कुछ ऐसे शब्दकार भी हुए हैं, इतनी सरलता से उन्होंने लिखा है कि क्या ही कहें। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। जी हाँ, आप समझ गए, अगर सादगी गीत बन जाए तो वो शैलेंद्र की कलम हो सकती है। उन्होंने ज़िंदगी की गहरी बातों को बेहद आसान शब्दों में कहा है। उनकी रचनाएं केवल गीत नहीं, जीवन की सीख जैसी लगती हैं। आज भी उनके शब्द दिल में सच्चाई की रोशनी जगा देते हैं। वहीं हर एक जो है शायर के अपने अलग अलग तौर तरीके रहे हैं, अलग अलग जज्बात रहे हैं, और उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से इन शब्दों को पिरोया है। कैफ़ी आज़मी साहब की बात करें तो उनकी शायरी में मोहब्बत भी थी और समाज की जिम्मेदारी भी थी, लेकिन उनके अल्फाज दिल में असर छोड़ते थे। आनंद बख्शी साहब की बात करें तो आम इंसान की भावनाओं को गीतों में ढाला, उनके शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं। उनकी शायरी ज़िंदगी को मुस्कुरा कर जीने की सलाह देती है।

सरल भाषा में गहरी बात कहना उनकी सबसे बड़ी खूबी रही है। आनंद बख्शी कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना। बहुत ही अच्छी अच्छी अच्छी जो है ये शायरियाँ हैं, ऐसा लगता है कि बस इन्हें पढ़ते रहें और सुनते रहें। जब कलम की दुनिया में कदम रखते हैं तो बस खो ही जाते हैं, ये होती है कलम की ताकत। आगे बढ़ते हैं और अब हम याद करते हैं आशा जी को। आशा भोसले की आवाज़ में एक बेहतरीन गज़ल शहरयार साहब की कलम से, खयाम साहब का म्यूज़िक, और आप समझ ही गए हैं उमराव जान फिल्म से ये गज़ल है।

एफएम रेनबो पर अंदाजे बयां कार्यक्रम आप सुन रहे हैं संतोष के साथ। और आपको बता दें कि ठीक 7 बजे से आप सुनेंगे मराठी भाषा में समाचार, और 7:10 पर जब हम आपके साथ होंगे हम तुम कार्यक्रम लेकर, तो उसमें आपकी फरमाइश के गाने बजाए जाते हैं। और आज का स्पेशल आप लोगों ने गेस कर लिया है, जी हाँ, आज बर्थडे गर्ल माधुरी दीक्षित के ऊपर फिल्माए गाने हम आपको सुनवाएंगे, तो आपकी पसंद होगी जो आप फरमाइश करेंगे उन गीतों को शामिल करेंगे कार्यक्रम में। और हमारे जो श्रोता सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो अपने गाने लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। तो लिखकर भेज दीजिए इस व्हाट्सएप पर, और जो हमें कॉल करना चाहते हैं तो वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। 022 हमारा एसटीडी कोड है, और हमारे नंबर्स हैं 2281-5787 और दूसरा नंबर है 2281-5789। इन नंबरों पर आप हमें कॉल करके भी आप अपनी फरमाइश दे सकते हैं, लेकिन वो आपकी फरमाइश वाले गाने जो होंगे वो 7:10 से हम तुम प्रोग्राम में होंगे। लेकिन साथ ही आप जो हमारे श्रोता हैं जो व्हाट्सएप पर हमें फरमाइश दे रहे हैं, तो उनसे ये गुजारिश है हमारी कि आप जब फरमाइश दे रहे हैं तो कम से कम 3-4 गाने की फरमाइश आप दीजिए, सिर्फ एक ही गाना मत लिखिए, ताकि हम भी चॉइस कर सकें और हम उन्हें शामिल भी कर सकें।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो चैनल पर, 107.1 एफएम पर, आकाशवाणी मुंबई का ये चैनल। और साथ में आपकी आरजे दोस्त संतोष, मेरा आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा मीठा सा नमस्कार। और हम तुम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, और हम तुम कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले ही आप लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि भाई आपकी पसंद के गाने जो सुनवाए जाते हैं, तो ये खुशी यूं ही बरकरार रहे, आप सबके गाने मैं सुनवा पाऊँ, यही मैं उम्मीद करती हूँ। और आज जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, आज जो है हम सुनवाएंगे माधुरी दीक्षित की फिल्मों के गाने। हिंदी सिनेमा की दुनिया में जब भी अदाकारी, नृत्य और मुस्कान की

बात होती है ना, तो माधुरी दीक्षित का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। अपनी शानदार अभिनय क्षमता और मनमोहक अभिव्यक्ति से उन्होंने हम सब का, लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता है। तो आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। वो ऐसे ही हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और खूब सारा काम करें और स्वस्थ रहें, खूब काम करती रहें। इन्हीं दुआओं के साथ, जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं और उनकी फिल्मों के कुछ गाने आपकी पसंद पर सुनवाते हैं।

0: विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 च्या कलम 12 नुसार पात्र नागरिक निशुल्क कायदेशीर मदत न्याय बंधू या मोबाईल ऍप वरून किंवा www.probono-doj.in या वेबसाइट वरून मिळवू शकता.
1: हम तुम कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं और जो है हमें बिल्कुल हम समय नहीं गंवाना चाहते हैं. हम जो है माधुरी दीक्षित के बारे में, माधुरी दीक्षित जी के बारे में हम सब जानते हैं, उनकी फिल्में जानते हैं, उनकी अदाकारी जानते हैं, तो समय ना गंवाते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा गाने सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं. और दिल फिल्म का गाना हम प्यार करने वाले आपने सुना और

गाने की फरमाइश की थी मान खुर्द मुंबई से प्रकाश शिंदे ने, और अगली फरमाइश है विजेंद्र घाटोल की आकोला से। ये है प्रेम ग्रंथ फिल्म का गाना, ये है विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, और आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर हम सब।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो इस ब्रेक के पहले आप सुन रहे थे बेटा फिल्म का गाना, अनुराधा पौडवाल की आवाज में कोयल सी तेरी बोली। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने की फरमाइश की थी और उन्हीं में नाम शामिल होता है।

श्री धरन जी का, और इनके साथ इनके दोस्त प्रकाश शिंदे हैं जो कि मान खुर्द मुंबई से हैं, और कोयल सी तेरी बोली ये गाने की फरमाइश प्रदीप अनंत कृष्णन जी की भी तरफ से है, ये गाना पसंद किया है विजेंद्र घाटोल जी ने भी, और सुशील यादव रेणु यादव हमारे साथ जुड़े हैं और हिरन मगरी सेक्टर 4 उदयपुर राजस्थान से हैं ये हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश लेने के लिए। और शंकराचार्य जी तेलंगाना से हैं, और हमारे साथ हैं राकेश माथुर जी पुणे से। आप सबकी फरमाइश लेने की कोशिश करेंगे। श्री धरन बालचंद्र जी आपका नाम शामिल किया। फिरोज सिगनपुरिया जी ने बहुत पहले हमें फरमाइश भेजी थी, तो अगली जो फरमाइश हम सुनवाएंगे वो इन्हीं की रहेगी, यानी फिरोज सिगनपुरिया जी का गाना आएगा। और ये गाना है लता मंगेशकर और एस पी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ों में, हम आपके हैं कौन फिल्म का गाना है ये। हमारे साथ वैदेही जी जुड़ी हुई हैं, धनंजय जी जुड़े हुए हैं न्यू मुंबई से, और प्रणव शिंदे हमारे साथ हैं, पंकज मोहोड हैं, और ध्वनि टोपी वाला हैं हरजिंदर छिंदा जसबीर जी हैं, और आपके गाने आपका गाना भी सुनवाने की कोशिश की जाएगी पूरी तरीके से। और महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी जी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र नोखेलाल, आप लोगों ने भाटापारा छत्तीसगढ़ से दत्तरेंगी से हमें मैसेज किया है, नूतन बर्वे हमारे साथ हैं, अजय साखरे इंदौर से हैं, दिग्दर्शन और कविता भी हमारे साथ हैं, राम प्रजापति हैं, फूलचंद सोनौने अकोला से हैं, और संजय दर्शन जी हमारे साथ हैं, अशोक पाटिल वर्ली से हैं, और राजेंद्र जुथानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे हैं जितने लोगों की फरमाइश हम शामिल कर पाएंगे। महेश शेट्टी जी का भी अभी मैसेज आया है, इनको भी जिस गाने की फरमाइश है उस गाने की फरमाइश और भी कई लोगों ने की है, तो पूरी कोशिश की जाएगी। अंजू जी हैं अंधेरी ईस्ट से, डॉक्टर अंजू हैं, और गुड इवनिंग अंजू जी आपको भी, और हम अपने सभी श्रोताओं को गुड इवनिंग करते हैं और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। चलिए अब हम ये गाना सुनवा देते हैं जो है फिरोज सिगनपुरिया जी की पसंद पर, और इस गाने के बाद एक और गाना आएगा जो भी हमारे बहुत जो कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं की पसंद है, और है प्रदीप अनंत कृष्णन जी ने स्पेशली इस गाने की फरमाइश की है, और ये गाना 1 2 3 4 बहुत ही जो है हिट सुपरहिट गाना था तेजाब फिल्म का, जो कि रहेगा अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। तो ये दो गाने बैक टू बैक आएंगे, और क्योंकि गाना कटे नहीं इसलिए हम बीच में बोलेंगे नहीं। अब हम आपसे जो है अनुमति लेना चाहते हैं, इंग्लिश प्रोग्राम रॉक विद जॉक शुरू होगा ठीक 8 बजे से। अब अपने दोस्त संतोष को अनुमति दीजिए, अपना और अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

0: Be glad that you're alone. So you said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go.
0: I'm a bad guy.
2: Namaskar. आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
3: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप

0: फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
2: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
4: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
5: अंडर द 3 पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इन इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन के फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Met department forecasts heatwave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
6: Almost free, open or safe, इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
5: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that it looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. We have more from a West Asia correspondent.
7: The talks yielded a wide range of agreements on energy. India Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company signed a strategic collaboration agreement to raise

0: can't touch this. Break it down.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया।

है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरार हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTI की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: बहुत बहुत इस्तकबाल आपका रंगे महफिल में, जहां हर लफ्ज में बसती है मोहब्बत और हर धुन में छुपा है एहसास का जादू। मैं हूं जरी, आपकी हमसफर, और इस खूबसूरत रात में दिल से निकली कुछ बातें लेकर आई हूं, कुछ शायरी और कुछ गजलें।

जी हाँ, कहते हैं तिश्नगी रोज मुलाकात में रह जाती है, मेरी हर एक बात कहीं बात में रह जाती है। इस तेज रफ्तार जिंदगी का आलम यह हिसाब कि सुबह के गम शाम को पुराने हो जाते हैं।

ये फन अता किया है तो इतना कमाल दे, वो शेर कह सकूं कि जमाना मिसाल दे, किस इम्तहान में दोस्तों कैसा सवाल दे, ये जिंदगी है कब किसे उलझन में डाल दे। आप सुन रहे हैं रंग महफिल जर्री के संग, अगली गजल पंकज उदास साहब की आवाज में।

आप सुन रहे हैं रंगे महफिल जरी के संग। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 11:15। कुछ लोग महफिलों की रौनक होते हैं और कुछ लोग खामोशी में भी याद आते हैं। रंगे महफिल के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ हूँ जरी। महफिल सजी थी, लोग भी थे, बातें भी थी, फिर भी कहीं एक अधूरापन सा था। शायद कुछ रिश्ते आवाज़ से नहीं बस एहसास से पूरे होते हैं। आप क्या कहते हैं?

एहसास करा देती है रूह जिनकी बातें नहीं होती। इश्क वो भी करते हैं जिनकी मुलाकातें नहीं होती। कितने बेबस हो जाता है ना इंसान। अब वो किसी को खो भी नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता।

0: रंगी महफिल में हर कोई मुस्कुराता मिला, कोई अपनी जीत पर कोई हालात छुपाता मिला। अजीब दौर है साहब, यहाँ चेहरों के पीछे हर शख्स थोड़ा छूटा मिला।
1: कूद फलांग अगर पसंद हो आपको और इजाजत हो तो गजल के साथ एक छलांग लगाएं। एकदम 80s में दाखिल हूं।
2: एक दौर ऐसा आया था कि सुधा जी का भी काफी नाम था प्लेबैक सिंगिंग में, तो उन्होंने भी एक गजल का रिकॉर्ड बनाया जो कि मैंने कंपोज किया था। चलिए उसी से एक गजल सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं रंगी महफिल। इस वक्त मैं आपके साथ जर्रीन, प्रोग्राम जहां हर लफ्ज में बसती है मोहब्बत और हर धुन में छुपा है एहसास का जादू। मैं नाज आपके हम सफर और आज की इस खूबसूरत रात में लेकर आई हूं दिल से निकली कुछ बातें, कुछ शायरी, कुछ गजलें। कहते हैं कभी कभी मोहब्बत सिर्फ इजहार नहीं होती, वो खामोशियों में भी सुनाई देती है। जब कोई बिना कुछ कहे आपकी हर बात समझ जाए, वही तो असली प्यार है। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी ही बात है तो बता दीजिए, क्योंकि कहते हैं मोहब्बत छुपाने से नहीं जताने से बढ़ती है।

आज की रात थोड़ी तन्हा है, थोड़ी महकी हुई है, बिल्कुल उस एहसास की तरह जब दिल के पास सिर्फ यादें होती हैं और एक हल्का सा दर्द भी। कभी कभी ना जिंदगी के सफर में हम भीड़ में होते हुए भी बेहद अकेला महसूस करते हैं, और कभी एक शख्स की याद ही पूरी दुनिया बन जाती है। चांद भी आज उदास सा लगता है, जैसे उसको भी किसी का इंतजार है। हर कोई खिड़की पर बैठा सोचता है कि क्या उसे मेरा ख्याल होगा।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: कोयल सी तेरी बोली,
7: हाय
6: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
7: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
6: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
7: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
8: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार।

0: रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: 102.6 पर आप सुन रहे रंगे में फिल इस वक्त में जरिया आपके साथ। आज दिल कुछ ज्यादा ही खामोश है, लेकिन इस खामोशी में भी एक सवाल बार बार उठ रहा है। बारहा दिल में एक सवाल आया, क्यों कुछ बातें हम कह नहीं पाते किसी से, क्यों कुछ एहसास दिल में ही रह जाते हैं। और फिर आज अचानक ये ख्याल आया, आज जब सोचा तो ये ख्याल आया दिल में कि क्या होता अगर हम वो कह देते जो सालों से दिल में छुपा के रखे हैं। शायद कुछ बदल जाता या फिर सब कुछ वैसा ही रहता। लेकिन जनाब, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, बस वो हमारी धड़कनों के साथ जीते रहते हैं। अगर आपके दिल में भी ऐसा ही कोई सवाल है तो ज़रा उसे महसूस कीजिए, शायद जवाब ना मिले लेकिन सुकून ज़रूर मिलेगा इस गज़ल की तरह।

0: फूल खिलते हैं।
1: 102.6 FM रेनबो प्रोग्राम रंगे महफिल इस वक्त जारी है। मैं आपके साथ जर्री। वो कहते हैं कि एक आह एक गहरी सांस जो उसे असर करने में पूरी उम्र लग जाती है और तब शायद इंसान जिंदा भी न रहे। और दूसरी लाइन में किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि अपने महबूब की जुल्फों की उलझनों की बात की जाए तो उन उलझनों के सुलझने तक कौन जीता है भला। यानी यूं कहें कि मोहब्बत सिर्फ खुशी नहीं बल्कि सब्र और इंतजार का भी नाम है। यही बातें चंदन दास जी कह रहे हैं अपनी अगली गजल में। पेश खिदमत आपके लिए।

ये गजलें, ये गीत बस रोमानियत ही नहीं फरमाते हैं, बल्कि ज़िंदगी की हकीकत भी बताते हैं हमें कि इस दुनिया से किस तरह से हमें बावस्ता होना है। बहरहाल, इस वादे के साथ जा रही हूँ कि अगली दफ़ा आपसे इसी खूबसूरत मोड़ पर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरार हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से

0: केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कल हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आइए अब सुनते हैं जीरो आर शो।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं सिंदूर फिल्म का गीत आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: दोस्तों, आप सुन रहे हैं जीरो आर शो, मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया। कार्यक्रम का अगला गीत है इस रात की सुबह नई फिल्म से, आवाज चित्रा और MM करीम की।

चुप तुम रहो चुप हम रहे। इस खूबसूरत गीत को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था इस रात की सुबह नहीं। और अब जो गीत है वो है हम चुप हैं ये दिल सुन रहे हैं, और इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है फासले।

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार

0: सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों जीरो आर शो में आइए अब सुनवाते हैं आपको कसूर फिल्म का गीत जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: और दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर में आइए आपको सुनवाते हैं पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल का गाया फिल्म बाहर आने तक का ये गीत।

0: दर्शिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाले इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भेंट भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते होने की भी संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरार हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनल पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में चल रहे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पहले महीने में पुलिस ने 806 लोगों को गिरफ्तार किया और 724 मामले दर्ज किए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: 1:05 और 42 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुहानी रात।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने

0: सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधान

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसे ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ

0: पक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भेंट भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोपों में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मेरी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:05 और 42 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भुलाई ना बने। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस।

0: शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: आर ऐप, डीटीएच और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज़ ऑन AI।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

पंचम से एक परिचय वो था जिसे मैं 30 साल जिया और भरपूर जिया हूं पूरी सरगम के साथ। संगीत के तो सिर्फ 7 ही सुर हैं मगर पंचम की शख्सियत में बेपनाह सुर थे और सारे के सारे हमने एक साथ जिए। अब ये एक और परिचय है उसकी चुप का जो तभी बीतेगा

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने हुरमूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया है। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कराने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि वाशिंगटन में हुई वार्ता के एक और दौर के बाद इसराइल और लेबनान 45 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि 2 दिनों की सफल वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है और जून में आगे की बातचीत होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं कल केरल, माही, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: शिवानी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
0: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की

0: बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। जारी है कार्यक्रम मिडनाइट मेलेडीज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया है। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और मुझको फ्री

0: ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगतोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगतोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है। वित्त मंत्रालय ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 23 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन टरबाइन ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े तक लागू रहेंगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।